0: Sumita, praise the Lord.
1: Praise the Lord.
0: Oh yeah, okay, you can continue, Sumita.
1: Okay, sister, thank you. हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमें मदद कर, हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में प्रभु। पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते आज के इस रात के समय के लिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, इस दिन नए हफ्ते तू लेकर आया प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते, हमारे हमारे विचार, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन में चंगाई मांगते। हर सिर से लेकर पाँव तक हमारे शरीर का तावा तेरे हाथ में देते। हमारे जीवन में तू कार्य कर, हमारे विचारों में कार्य कर, तेरे स्तुति करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, मदद कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा बारा शिखारा बारा शंदरा बारा रिखारा बारा से खेरे बेरे रे रे शारा बारा रा रा री आन तारा बारा कुंद बोरो शी केरे बेरे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा उठाते। पवित्र आत्मा हम स्वागत करते, वेलकम होली स्पिरिट, हमें भर दे, तेरी शुद्धता आने दे प्रभु, हमारे विचारों को, हमारे स्वभाव के ऊपर। प्रभु तू हमारी मदद कर रहे, तू हमारे सहायता है, तू हमारे रक्षा करने वाला, हमें चलाने वाला प्रभु तू परमेश्वर है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें तैयार कर, लिर कर, स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, हमारे मनों को विचार, हमारे मनों को खोल दे प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते, हमारे इस इंटरनेशनल वड़ा पिनिश में सभी लोगों का स्वागत करते, सभी लोगों को प्रभु तेरे नाम से माए, तेरा आशीर्वाद मांगते उनके ऊपर। मदद कर, सुबह से शाम तक होने वाले हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को हम तेरे हाथों में देते प्रभु। तो तैयार करिए हमारा एसपी वर्ल्ड मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए मांगते, हमारे ग्रुप के सभी मंडली को तेरे हाथ में देते, सभी के जीवन में तो कार्य कर प्रभु, सहायता कर, मदद कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा बरा शिखरा बरा शंदरा बरा रिखंडा बरा कुंदु ऋषि के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम को ऊंचा उठा के मदद कर। धन्यवाद, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अद्भुत है, तू महान है प्रभु। धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद।

है। यस प्रभु, तेरी दया हमारे लिए काफी है। तू आया हमें क्षमा करने, माफ करने, हमें नया कर दिया, हमें अशुद्ध से शुद्ध कर दिया प्रभु। हमारे पापों को तूने ले लिया, हमारे दर्द को तूने ले लिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो यस प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।

धन्यवाद धन्यवाद, तो राजाओं का राजा, धन्यवाद, तो राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु। हम मांगते प्रभु एक मन होकर फिर से एक बार तेरे चरण पे आते, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरा

क्षमा करने वाले तेरी आराधना, उद्धार देने वाले तेरी आराधना, पाप क्षमा

तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, ओ मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, ओ मेरे प्यारे प्रभु। पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना, जीवन देने वाले तेरी आराधना, मृत्यु को सहने वाले तेरी आराधना, पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना। आराधना हो आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना हो आराधना, आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना हो आराधना, मृत्यु को सहने वाले तेरी आराधना। इसलिए तेरी आराधना करते, पाप सहने वाले तेरी आराधना हो, चंगाई देने वाले तो तेरी आराधना हो, जीवन देने वाला तो परमेश्वर है प्रभु। इस पर धन्यवाद करते।

जय यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चरायो मुझे, सिंह चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई गति नहीं है। हरी चरायो मुझे, सिंह चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति नहीं मुझे। हरी चरायो मुझे, सिंह चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चरायो मुझे, स्नेह चराता है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चरायो मुझे, स्नेह चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं। हरी चरायो मुझे, स्नेह चराता है। शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, प्यार मेरा मगन रहा है। ये शत्रु के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चरायो मुझे, सिंह चराता है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई गति नहीं है। हरी चरायो मुझे, स्नेह चराता है। हालेलुया, स्नेह चराता है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चरायो मुझे, सिंह चराता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें कोई घटी नहीं है, तो हमें हरी चराई में ले चलता है, स्नेह से हमें चराता है। तो हमारा यहोवा चरवाहा है हमारा, हमें कोई घटी नहीं होने दिया, हमें हरी चराई में तो ले गया, हमारे ऊपर झरने बहने दिया प्रभु, हमें गिरने से बचाया, पीड़ा से बचाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की चर्चा करते, तो विश्वास योग्य धन्यवाद करते, तेरे लहू से हमें ढांपते, तेरे सामर्थ से भर दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते इस रात के समय के लिए, हम तेरा धन्यवाद करते। यस प्रभु, तूने हमारे गड़बड़ी मन को हटाकर हमें शांति से भरा, तूने शांति की लाठी से हमें भर दिया। हम तेरा धन्यवाद करते इस रात के समय में, तेरी संगति मांगते, तेरी उपस्थिति मांगते, तेरा अभिषेक मांगते। सहायता कर, मदद कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रार्थना करते प्रभु, तूने हमें शांति से भरा से धन्यवाद करते, तूने हमें हर गड़बड़ से बचाया धन्यवाद करते, तूने तेरे लहू से हमें कवर किया धन्यवाद करते। प्रभु सहायता कर, मदद कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। हम हमारे सारे प्रभु बातों को लिए धन्यवाद करते, तूने हमें बचाया धन्यवाद करते।
इस पर धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम रात के समय के लिए प्रार्थना करते ताकि प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, सहायता कर, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हमें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जो पीड़ा में है।

0: धन्यवाद प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे विषयों में जितनी भी बेटा बेटी हैं सभी के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हर एक के जीवन में कार्य आने दे प्रभु, तेरी तसल्ली से मैं भर दे, तेरे विशेष से मैं भर दे, तुम्हें मदद कर इस तरह महीने का काम कर सके प्रभु। हमारी मदद कर, हमारे हेल्थ को तेरे हाथ में दे दे, औलू की हेल्थ को तेरे हाथ में देते, उसके जीवन में कार्य कर, उसके परिवार में कार्य कर, उसकी अवस्था में उसको ठीक कर दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, तो सहायता कर, मदद कर, तेरे लोग से हमने कवर कर दिया, तूने हमको बचाया, धन्यवाद। हमारी करुणा, तेरी करुणा हमारे पर बरसी, धन्यवाद। तूने हमें हमें अंगीकार किसे, धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ये सारी विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम इस वचन में जाएंगे। आज हमारा वचन है भजन संहिता 31वां अध्याय से हम 19 से वचन पढ़ेंगे। उन्नीस वचन। हालेलुया प्रभु, वचन की तरफ हमारी मदद कर प्रभु। पढ़ेंगे भजन संहिता 31, उसका हम पढ़ेंगे 19, 31 में हम पढ़ेंगे, 19 से पढ़ेंगे 19वां वचन। जो अहंकार अपमान से धर्मी की निंदा करता है, उसकी झूठ बोले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी किए। तू उन्हें दर्शन देने देने गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप से झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। देखो, यह दावीद बड़े अहंकार से निंदा में पड़ा हुआ था, झूठ बोलने वाले के मुंह में फंस गया था। और उन्हें दावीद परमेश्वर से बातें कर रहा, बोल रहा है, आ तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने अपने डरवे के लिए रख छोड़ी। देखो, प्रभु की भलाई इतनी बड़ी है कि उसने उसका अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल के रखा। हमारी परवाह की प्रभु ने, जिस तरह दावीद इधर के रहे अपने डरवे के लिए रख छोड़ी, उसने अपनी बड़ी भलाई आपके और मेरे लिए रखी गई है, छोड़ी के रखी है, रखी गई है। और अपने शरणागत के लिए मनुष्य से सामने प्रकट भी किए। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थानों में मनुष्य की बुरी दुष्ट गोष्ठी में गुप्त रखेगा। देखो, इधर दो बातें प्रभु कह रहा है। पहला कहता है, तेरी भलाई कितनी बड़ी है जो तूने हमारे डरवे के लिए रख छोड़ी। परमेश्वर ने अपनी बड़ी महिमा भलाई उसने हमारे और आपके लिए रखी गई है। और दूसरी बात कहते हैं, मैं अपने शरणागत के लिए मनुष्य से तू उन्हें दर्शन देने की गुप्त स्थान में मनुष्य को बुरी दृष्टि में गुप्त रखेगा। देखो, परमेश्वर ने हमें दर्शन देने और हमारे हर बात गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी में गुप्त रखेगा। हमें उसने गुप्त, हमने उसको छुपा, प्रभु ने हमें छुपा के रखा है। यहोवा धन्य, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने हमें गढ़ वाले नगर से रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की। प्रभु ने हमें बुराई से हटाकर हमारे ऊपर उसने क्या किया, अद्भुत करुणा की, भलाई की। तो वह सीधा हो, धन्यवाद करते प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद। आइए दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। पहले तो उसने हमारे ऊपर भलाई की और हमें उसने हमारे लिए अच्छी बातें रखी छोड़ी और अपने शरणागत के लिए मनुष्य से सामने प्रकट भी की, उन्हें अपने गुप्त स्थान में मनुष्य से उसने अपने गढ़ वाले नगर से खोलकर उस मुझ पर अद्भुत करुणा की। प्रभु ने दाविद के ऊपर बड़ी अद्भुत करुणा की और तुम्हारे और आपके ऊपर भी हमें यहोवा की करुणा की, यहाँ करुणा की हमारे और आपके लिए। अब मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहाँ की दृष्टि में दूर हो गया। कई बार हम लोग परेशान होकर प्रभु से दूर हो जाते, निकट नहीं दूर हो जाते, परेशानी में हो जाते, लेकिन यह इधर परमेश्वर दाविद से बात कर रहे कहते हैं, वो दाविद कह रहा है मैंने तो घबरा कर कहा था कि मेरे यहोवा के दृष्टि में मैं दूर हो गया। आज कई हम भी ऐसे ही है, परमेश्वर के दाऊद के समान हम लोग उससे दूर हो गए। ऐसा प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर, यीशु के नाम से मांगते प्रभु। और यह दूसरी बात उधर बोला, यह कि सब भक्तों उससे प्रेम रखे क्योंकि सच्चे लोगों को की रक्षा करते हैं। देखो परमेश्वर हमारी सबकी रक्षा करते हैं, हमारे हर बार शरीर में वो कोई भी मिलावट नहीं होने देता है। ये हमारा परमेश्वर है, वो हमें संभाल के रख रहा है, इसे धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। आज हम देख सकते दाविद मुश्किल में था, संकट में था, प्रभु ने उसको हर बातों से गुप्त स्थानों में बचा के रखा, पीड़ा से बचा के रखा, बंधन से बचा के रखा, और आपके और मेरे जीवन में भी वो काम करना चाहता है, आशीर्वाद करना चाहता है, हमें मदद करना चाहता है। वो हमारे हर मुसीबत में उसकी फोटो है। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे जीवन में तूने करुणा की, दाविद के राजा के जीवन में करुणा की प्रभु, और तेरे लहू से हमने तूने हमको ढाप के रखा है। आज हम एक मन होकर प्रार्थना करते इधर प्रभु, जिस तरह तूने दाविद के ऊपर तेरी करुणा उंडेल की, उसको तूने घबरा नहीं दे रखा, उसको तूने हर बुराई से दूर रखा, और तेरी दुहा उसने तेरी दुहाई दी और तूने उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना प्रभु। आज तू हमारी भी गिड़गिड़ाहट को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी अवस्था को ठीक कर दे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर। उसी तरह हम और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता विधाय का 64 का चौथा वचन, 64 का 4 वचन ऐसा कहते हैं, पहला तो दाविद को उसने अपनी करुणा भेजी, दया से भर दिया, हर बंधन से उसको छुड़ाया, लेकिन इधर देखो 4 का वचन क्या कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काली के तुझे छोड़ कोई ऐसा ईश्वर नहीं। पूर्वी के प्राचीन काल से प्रथम ही परमेश्वर की ऐसी योजना कि उसने मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं कभी, परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कानों से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। तो तू तो अपने उन्हीं से मिलता है, धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए स्मरण करते। देख तू क्रोधित हुआ क्योंकि हमने पाप किया, हमारी यह दशा तो बहुत समय से ही है। वो हमारा उद्धार हो सकता है। आज परमेश्वर हमें सभी को बचाना चाहते हैं, इधर साफ लिखा है कि प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, हमारे क्रोध से हमें बाहर करना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना चाहता है वो, अशुद्ध मनुष्य से हमें बचाने चाहता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते इस सुंदर वचन के लिए, जिस तरह तूने आज हमसे बताया प्रभु, हम वचन के लिए मार्गदर्शन कर दो, ऐसे हम प्रार्थना करते। हर पीड़ा से तो आजाद कर दे, हर बुराई से आजाद कर देते, हम मांगते, हमें मदद कर, हमारे लोगों को बचा, हमारे देश को बचा, हमारे इसराइल देश का ताबा, गांजा देश का ताबा और अन्य कंट्रीज के भी, सब जगह में जो तूफान मची हुई है, उस तूफान से हमें सभी को आजाद कर दिया, आजाद कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्पेन देश वड़ा पिनिस में सभी भाई बहनों का स्वागत करते, उन्हें सभी को बचाना प्रभु, से लहू से धापे रखना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासिक के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड निर्मला सिस्टर,
1: Praise the Lord, Sumita. Praise the Lord.
0: Sister.
1: Okay, thank you. How is your husband?
0: Little low. Today is also not unwell, up a little bit. On God is healing today, you know, sister. I will tell you one testimony. 2 days, my face is very, how say, by the sun, I have a problem, okay? That day, this is there is no sun, I go, my face all grow jumbo, and I very worry about, and then I come home in the garden, I pray, oh Lord help me, I need lot of the work, what I do, and few days, no, a few time night time, I early morning get up, to again go, big my face, cheek and everything go, what to happen, what to do, and I pray 2 days, this yesterday I seen my face nothing, everything gone.
1: Amen.
0: This is the my one testimony, and the second thing, today my very not unwell, and today we are listening, we are yesterday our church has by Holy Spirit how work in our life, okay? We have talk about that like John chapter, and then we read on afternoon I will come, and evening I will every Monday's fasting, and I say, oh Lord help me, and I pray